0: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर शनिवार का दिन है और मैं यानी नीपा और मेरा साथ दे रहे हैं
1: आपका होस्ट और दोस्त विनीत।
0: हम आ गए हैं आज का संगीतमाला लेकर। बहुत दिनों के बाद विनीत जी आपकी और मेरी एक साथ यहाँ पर मुलाकात हो रही है
1: जी।
0: और काफी टाइम के बाद में हम लोग आज का शो साथ में कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप विनीत जी?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप फरमाएं आप कैसी हैं
0: जी। विनीत जी, पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे वाकये हो गए
1: जी,
0: और आज का ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम सबसे पहले थैंक्स कहना चाहेंगे। और एक हमारे सभी लिसनर्स को पता ही है कि हमारे ICCA के फाउंडिंग मेम्बर डॉक्टर किशन लाल जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं।
1: जी जी जी, एब्सोल्युटली। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो ये शो है उसके प्रायोजक है ICCA, विच इज़ इंडिया कैनेडा कल्चरल एसोसिएशन, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं श्री डॉक्टर किशन लाल जी, उनकी पिछले हफ्ते आकस्मिक देहांत हो गया उनका। और उनकी जो क्या कहते हैं, जो फ्यूनरल है वो आज ठीक 2:30 बजे सैस्केटून फ्यूनरल होम पर है। तो जो भी पूरे सैस्केटून में उनको फॉलो करते थे, उनको जानते थे, मैं चाहूँगा कि आप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने वहाँ बेशक जा सकते हैं।
0: और विनीत जी, हमें वो हमारा जो सौभाग्य था कि आप और मैं दोनों जब
1: जी हाँ पिछले साल
0: को हमने जब रेडियो स्टेशन पे हम लाए थे तो हम ही ने उनसे बात की थी
1: जी।
0: और कितने उनसे सीखने के लिए हमें इतना इंस्पिरेशन मिला था कि इतनी उम्र होने के बावजूद उनका जो जुस्सा था, जोश था, वो हमें सचमुच में सबके लिए एक सीखने का एक मौका था कि उम्र कुछ भी हो, उम्र जस्ट नंबर होती है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ करना है, किसी की सेवा करनी है या कम्युनिटी के लिए कुछ भी करना है, तो आप कोई भी एज हो उसमें आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। और हमारे तरफ से उनको हम भावभीना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और
1: Absolutely.
0: उनको भगवान उनकी आत्मा को
1: एब्सोल्युटली। दोस्तों, मेरे ख्याल में एक लेगेसी थी उनकी पूरे सस्केचुविन में। जितना कि मुझे पता है कि 1960 के दशक में वो सैस्केटून आए थे, और ऐसे तो वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, फिर वो दिल्ली मूव हुए, दिल्ली से फिर वो लंदन मूव हुए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर उन्होंने PhD करी जर्मनी से, और फिर ये सब करने के बाद वो सैस्केटून मूव हुए 1962 या 63 में, एंड देन ही बिकेम अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुविन, और करीब 7-8 साल उन्होंने वहाँ काम किया, और उसके बाद उनको उस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, और 35 साल तक वो यूसैस्क में एज अ प्रोफेशनल प्रोफेसर थे और हेड थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के
0: जी। हाँ, और उनकी जगह जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता कोई, लेकिन जस्ट हमारी तरफ से उनको बहुत ही प्रणाम।
1: एब्सोल्युटली।
0: शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और जैसे हम हमेशा से कहते हैं, आपकी कोई भी फरमाइश हो, किसको कोई बर्थडे विशेस देनी हो, या कोई भी आपको मैसेज अपने लाउड वन तक पहुंचाना हो, तो आप हमारा जगह रह सकते हैं और हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 3062425002। और विनीत जी, शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। तो जैसे मैंने कहा, जैसे लास्ट अभी मई को
1: जी,
0: हमारे बॉलीवुड की एक महान गायिका थी सुमन कल्याणपुरी जी, उनका भी देहांत हो गया। वो भी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। उनका भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा योगदान
1: जी
0: था, कि उनकी जो आवाज़ थी, उनकी आवाज़ में जो सच्चाई थी और उनका जो खरापन था। तो पहले मैं प्रोग्राम के शुरुआत में सुमन कल्याणपुर जी की ही आवाज़ में गाया हुआ एक गाना है, फिल्म का नाम था जहाँ प्यार मिले, तो वो सुनाना चाहती हूँ। चले जा चले जा चले जा जहाँ प्यार मिले।
1: जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स और शंकर जय किशन साहब का म्यूजिक, जहाँ प्यार मिले 1969 की मूवी से सुमन कल्याणपुर जी का ये गाना।

0: जो गाना हमने सुना वो सुमन कल्याणपुर जी ने उनकी ही आवाज़ में ये गाया हुआ गाना था। विनी जी, पता है हमें सुमन जी की आवाज़ जो है वो लता जी से इतनी मिलती जुलती है ना कि काफ़ी गाने हैं जो मुझे भी पता चला कि वो लता जी ने नहीं, सुमन कल्याणपुर जी ने गाए हुए हैं, और काफ़ी फेमस गाने रह चुके हैं। जैसे एक फिल्म आई थी उसका बहुत ही फेमस, मतलब आप बोलोगे ना जब जब फूल खिले, वो बहुत ही 1965 की मूवी थी, और उसका जो गाना है नाना करते प्यार कर बैठे, तो वो गाना देखिए आपको पता भी नहीं था कि ये सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में गाया हुआ गाना है। तो
1: जी मुझे लगा कि लता जी नहीं गाया हुआ।
0: ऐसे बहुत सारे गाने हैं, तो पहले ये सुना देते हैं हमारे लिसनर्स को गाना,
1: जब जब फूल खिले से नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज। लेट्स हियर द सॉन्ग।

0: विनीत जी, जैसे देखा जाए ना तो हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जो भी कलकत्ता से जो होते हैं ना, बिलोंग करते हैं ना, वो बड़े टैलेंटेड होते हैं. और मतलब सिंगिंग में तो उनका कोई हाथ,
1: सारे वेस्ट बंगाल से आपका मतलब.
0: तो ये जो सुमन कल्याणपुर जी थी वो भी कोलकाता में ही उनका जन्म हुआ था, और उनके जो पापा थे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे. तो उनकी ट्रांसफर हुई थी ढाका में, तो उनका जो स्कूलिंग आधा वो ढाका में हुआ था. और फिर 1943 में उनके पिताजी बच्चों के फ्यूचर के लिए वो मुंबई आ गए.
1: अच्छा जी.
0: और सुमन जी को म्यूजिक से बहुत लगाव था, वो पियानो बहुत उनको पसंद था, और वो अपनी फ्रेंड के साथ फिर म्यूजिक क्लासेस में भी जा रही थी. और उनके जो पड़ोस में एक रहते थे, उनके पड़ोसी जो थे पंडित केशव राव जी, वो पूना प्रभात फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे. और उन्होंने एक बार सुमन जी को गाते हुए सुना था, तो उन्होंने उनके पिताजी को कहा था कि प्लीज़ इसको म्यूजिक की तालीम दीजिए, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है. और फिर कॉलेज में भी जब उन्होंने एक बार स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया था, तब तलत महमूद जी ने उनको सुना था.
1: अच्छा जी.
0: और उन्होंने उतना उनको सराहा था और उनको एनकरेज किया था कि आपका आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. लेकिन उस जमाने में वो बड़े कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी, तो गाना और पेंटिंग उनको बहुत शौक था, लेकिन वो घर के हद तक ही रहकर वो सब करना चाहती थी. लेकिन जब केशव राव जी ने उनको कहा कि नहीं, ये उनमें बहुत अच्छी टैलेंट है, तो उनको ज़रूर फिल्मों में गाना गाना चाहिए. और फिर उनकी सबसे पहले उनको मौका मिला, एक मराठी फिल्म आई थी उसमें उनको गाने का मौका मिला था 1954 में. वो सिर्फ 16 साल की थी तब उन्होंने ये गाना गाने की शुरुआत की थी. और फिर तो बॉम्बे मतलब हिंदी फिल्म में भी उनको गाने का मौका मिला था. और देखा जाए तो लता जी और उनकी आवाज़ बहुत ही सिमिलर थी, तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में 150 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं.
1: अच्छा जी. नहीं मुझे नहीं पता,
0: क्योंकि उनकी आवाज़ पता ही नहीं चलता कि इतनी सिमिलर थी. और वो इतनी शाय थी, और पहले तो फिल्मों में जो गाने गाते थे, रेडियो पे गाने बजते थे, तो कोई अनाउंस नहीं करता था कि कौन सिंगर
1: जी
0: है. तो सबको यही था कि हाँ ये लता जी ने ही गाया
1: होगा. तो लता जी सीनियर थी या सुमन जी सीनियर?
0: लता जी सीनियर थी.
1: अच्छा जी.
0: सुमन जी बाद में आई थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, लॉयल ये जो रॉयल्टी के मामले में इन लोगों में लता जी और
1: मतभेद
0: हो गए थे. तो उस वक्त दोनों ने डिसाइड किया था, लता जी और रफी जी ने, कि हम लोग एक दूसरे के साथ में गाना नहीं गाएंगे.
1: अच्छा जी.
0: लेकिन उन दोनों की आपको तो पता है गाने सारे हिट थे, तो अभी इस म्यूजिक डायरेक्टर को तो चाहिए था कि कोई लता जी की जगह रफी जी के साथ में कोई ऐसा उनके बराबरी का कोई आए. तो तब सुमन जी की जो आवाज़ थी वो इतनी सुरीली थी और लता जी से इतनी मैच करती थी, तो सब उन लोग ने जाकर मोहम्मद रफ़ी जी के साथ सुमन कल्याणपुर जी को लेते थे. तो अभी जो ये गाना मैं आपको सुना रही हूँ, फर्स्ट फिल्म का गाना है तुमसे ओ दीवाने, कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी, ये हम सुनाते हैं हमारे लिसनर्स को.
1: एब्सोल्युटली. मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़, आनंद बख्शी के लिरिक्स, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक, जितेंद्र बबीता का किरदार, तुमसे ओ हसीना फ्रॉम द मूवी फर्स्ट.

0: देखा मेरी जी कितना फेमस गाना है, और ये सुमन जी की आवाज़ भी इतनी सुरीली है, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हैं, और ये है ना इतनी शाय थी कि वो पब्लिक में जाना पसंद नहीं करती थी, और उनकी उनको अमीन सयानी जी ने 35 साल से वो उनको बता रहे थे कि सुमन जी आकर मेरे साथ एक प्रोग्राम कीजिए कि उनका इंटरव्यू ले, लेकिन उन्होंने कभी हाँ ही नहीं कही थी, और बाद में आई थिंक 40 साल के बाद में उन्होंने अमीन सयानी जी के साथ में
1: पहला शो किया था,
0: और तब उन्होंने एक वहां पर एक कंडीशन रखी थी कि कोई भी मेरी पिक्चर नहीं लेगा, क्योंकि वो गाने के प्रति इतनी उनका डेडिकेशन था कि वो बोलती थी मेरा गाना आप सुनाओ, उनको पब्लिक के सामने आना ही नहीं था। और फिल्म आई थी बात एक रात की, उसका ये जो गाना है मुझे मुझे खुद को ऐसा लगा कि ये लता जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है, ये सुमन कल्याणपुरी जी की ने ही गाया है, और गाने की बोल है ना तुम हमें जानो,
1: ना तुम हमें जानो, मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स, सचिन देव बर्मन का म्यूजिक डायरेक्शन,

0: Commissioners and truckers will be sharing our highways. Northern Resource Trucking points out that most accidents involving trucks and cars can be avoided. If you are following a truck and can't see its side mirrors, you're driving too close. When passing, make sure you have full view of the truck before pulling in front of it. With know-how and common sense, both trucks and passenger cars can reach their destination safely. Best wishes for a safe and enjoyable summer from everyone at Northern Resource Trucking. Find them on Facebook.
1: Birkenstock sandals, blunt stone boots, Don't Have Socks covers the features
2: from Bacon Night
1: commutes.
3: We've got an incredible selection of Birkenstocks with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstock's waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
1: Now all see ladies and see gentlemen, they all ask how and where. It's a Broadway shoe repair. It's a Broadway shoe repair.
4: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
5: CFCR 90.5 FM in Saskatoon is currently conducting on-air transmitter testing. You may notice intermittent broadcast changes during this time. You can reach us with any questions at 306-664-6678.
6: वेलकम बैक टू संगीत माला जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ और आज मेरा साथ दे रहे हैं
7: आपका होस्ट और दोस्त विनीत।
6: तो विनीत जी इतने सारे गानों की रिक्वेस्ट भी आई हुई हैं और आज पता है ना आपको एक खास हमारे बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर कम सिंगर का भी बर्थडे है जिसके बारे में हम बातें बात करेंगे
7: जी।
6: सबसे पहले हम जो रिक्वेस्ट आई हैं वो बारी बारी हमारे लिसनर्स को सुना देते हैं। किरण जी का फोन आया था और वो सुनना चाहते हैं पुरानी एक फिल्म थी भाभी और उसी का गाना है चल उड़ जा रे पंछी। विनीत जी कितनी सही बात है ना
7: जी।
6: अगर हम देखें तो ये जो पंछी हमारे जो बॉडी के अंदर जो आत्मा है उसी को बोलते हैं ना
7: जी।
6: बॉडी जब आत्मा चली जाती है तो
7: Absolutely.
6: पंछी है वो उड़ ही जाता है ना
7: जी जी जी।
6: तो ये गाना अगर कोई भी अब गाने लीजिए उसमें अगर उनके वर्डिंग्स को नोट करे तो वो हमें उसको इतना डीप मीनिंग दिखाई दे रहा है
7: जी।
6: तो किरण जी की फरमाइश पर सुना
7: एब्सोल्युटली। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने और म्यूजिक बनाया है चित्रगुप्त जी ने। मोहम्मद रफी जी की आवाज। चल उड़ जा रे पंछी फ्रॉम द मूवी भाभी।

0: तो ये गाना हमने सुना किरण जी की फरमाइश का, और विनीत जी हमें रिक्वेस्ट वैसे आ रही है और सबकी हम लोग रिक्वेस्ट प्ले तो करने ही वाले हैं। तो अगला जो गाना है वो हमारे लिसनर का, हमारे होस्ट भी रह चुके हैं
1: जी
0: सुधीर सूर्यवंशी जी, वो फिल्म पाकीज़ा का गाना सुनना चाहते हैं और गाने के बोल हैं लता जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना, चलते चलते मुझे कोई मिल गया था
1: जी। पाकीज़ा मूवी से लता मंगेशकर की आवाज़, गुलाम मोहम्मद की म्यूज़िक डायरेक्शन और कैफ़ी आज़मी के बोल।

0: मिल गया।
1: वाह बहुत ही प्यारा गाना था। और हम सीधे विनी जी रिक्वेस्ट की ही बातें करते हैं क्योंकि इतने सारे गाने आए हैं और जो मेन जो हमारे आज जिन म्यूजिक डायरेक्टर का बर्थडे है उसके भी गाने हमें चलाने हैं।
2: पहले थोड़ा सा बूझो तो जानो खेलना पड़ेगा आपको नीपा जी,
1: वो तो हम बताएंगे ही हमारे लिस्टर्स को। लेकिन अभी जो अगला जो गाना है वो फिल्म आई थी कसूर और देवल पटेल जी ये गाना सुनना चाहते हैं
2: जी।
1: तो देवल जी की फरमाइश पर सुनवा देते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म कसूर का ये गाना।
2: नदीम श्रवण का म्यूजिक, समीर के लिरिक्स, कसूर मूवी, कोई तो साथी चाहिए, संग बाय कुमार शानू साहब।

हम बात कर रहे हैं और हमने जैसे हमारे लिसनर्स को कहा, अगर आपको कोई भी गाना सुनना हो या किसी को गाना डेडिकेट करना हो तो हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 3062425002। और विनी जी, एक बर्थडे विश की एक रिक्वेस्ट आई हुई है ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो। रक्षिता जी, अपने हबी का 2 दिन के बाद में बर्थडे है, हरीश जी, तो उनको एक गाना डेडिकेट करना चाहती हैं। और फिल्म आई थी रोजा का, बहुत ही सुरीला, बहुत प्यारा गाना है, चित्रा और बाल एसपी बाल सुब्रमण्यम जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गाना है, ये हंसी वादियाँ। तो उनकी जो रक्षिता की तरफ से उनके हबी हरीश जी को ये गाना हम डेडिकेट करते हैं। और हरीश जी, हम सब की तरफ से आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे।

0: मिली जी इतने प्यारे गाने हैं कि लगता है हम सारे गाने पूरे चलाए, लेकिन जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई, क्योंकि हमें आज जिनकी, जो महान हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मेन म्यूजिक डायरेक्टर जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने पूरी बॉलीवुड म्यूजिक का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया था
1: जी,
0: उनका भी आज बर्थडे है। तो आप कहते हैं ना पूजो तो जाने करे, तो चलिए आप गाना सुना दीजिए और देखते हैं हमें हमारे लिसनर्स क्या कहते हैं।
1: एब्सोल्युटली।

0: हाँ जी, तो ये बूजो तो जाने, हमने आपसे कहा और हमें मैसेज भी आए हैं, तो तीन जने जिन्होंने मैसेज किए हुए हैं, तो पहले स्टूडियो का नंबर मैं फिर से बता देती हूँ, 3062425002 हमारे स्टूडियो का नंबर है। और जैसे
1: जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। और आज जिस जादूगर का हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्मदिन है, वो हमारे हिंदी फिल्म संगीत और सिनेमा के धड़कन रहते थे। उनका नाम है
0: आरडी बर्मन जी, और
1: पंचमदा,
0: प्यार से हम पंचमदा कहते हैं। और विनी जी, आपको पता है उनका नाम पंचमदा कैसे पड़ा?
1: जी नहीं।
0: बचपन में जब उनका जन्म हुआ तो हमारे दादा मुनि अशोक
1: जी
0: वो उनको मिलने के, जैसे बेबी आता है तो सब लोग देखने जाते हैं ना, तो वो बहुत रोया करते थे, तो वो जो रोते थे ना तो उसमें उनको प की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही।
1: अच्छा जी।
0: तो जैसे हमारे वो सारे गामा प है
1: जी,
0: उसमें प जो है वो पांचवा
1: स्वर है,
0: स्वर है। तो दादा मुनि जी ने, अशोक कुमार जी ने उनको कहा कि इसकी आवाज में तो मुझे प सुनाई दे रहा है, पंचमी उसका नाम लगते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वर है पांचवा।
1: जी।
0: और उनका नाम तब से पंचम भी हो गया, और जिन्हें आर डी बर्मन जी हम कहते ही हैं। तो पंचमदास जिन्होंने हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जो पूरे जो म्यूजिक का ट्रेंड है वो पूरा सा बदल दिया, और वो हमारे एस डी बर्मन जी के बेटे रह चुके हैं। तो उनके बारे में तो विनी जी जितनी बातें कम करें, जितने गाने सुने उतना कम है, और वक्त भी कम है हमारे पास। तो
1: एब्सोल्युटली, और मतलब उनके बचपन की तो क्या बात कही जाए। उनके पिता भी जो थे वो संगीत सम्राट थे, एस डी बर्मन, और उन्होंने अपनी, मतलब पिता के होने के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो एब्सोल्युटली उनके गाने हम अब आगे प्ले करेंगे। तो पहला गाना जो है,
0: जी हाँ, फिल्म आई थी तीसरी मंजिल, उसी का जो धमाकेदार गाना है, आशा भोसले जी के साथ में मोहम्मद रफी जी ने जो गाना गाया है।
1: मुझे लगता है उस मूवी के सारे ही गाने काफी अच्छे थे।
0: जी जी जी जी।
1: तो कौन सा वाला हम पहले प्ले करेंगे? नीपा जी, एब्सोल्युटली। तो तड़कता भड़कता हुआ गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, शम्मी कपूर और आशा पारिक के ऊपर पिक्चराइज, मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने इसे गाया, आर डी बर्मन साहब के म्यूजिक और लिरिक्स बाय मजरू सुल्तानपुरी। तीसरी मंजिल 1966 में ये मूवी आई थी। लेट्स हियर द सॉन्ग।

0: हमारे लिसनर को. और ये जो आर डी बर्मन जी है, वो हम लोग जैसे कहते हैं ना
1: जी,
0: कि सिंगर जो होते हैं या म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, घर में बचपन में माहौल भी ऐसा होता है.
1: हाँ जी.
0: और उनको जरा वेस्टर्न म्यूजिक ज्यादा पसंद हुआ करता था, और उसकी झलक हम हमेशा उनके म्यूजिक में भी देख ही सकते थे.
1: एब्सोल्युटली.
0: और उन्होंने आराधना फिल्म जो आई थी, उसमें जब एच डी बर्मन के साथ वो म्यूजिक देने वाले थे, एच डी बर्मन जी की तबीयत कुछ नासाज थी, तो आर डी बर्मन जी ने भी उस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्ट, मतलब म्यूजिक डायरेक्शन उन्होंने की हुई थी. तो आराधना फिल्म का एक बेहतरीन गाना है, जो कहते हैं ना शुरुआत कैसे होती है किशोर कुमार जी की आवाज में.
1: जी जी जी जी,
0: कैसे बताइए.
1: एब्सोल्युटली, जो यूडलिंग होती है.
0: हाँ जी.
1: हे हे हा, तो दोस्तों आप पहचान ही गए होंगे कि नीपा जी कौन से गाने की बात कर रही हैं. तो लेट्स हियर द सॉन्ग कोरा कागज था ये मन मेरा, फ्रॉम द मूवी आराधना. एस डी बर्मन / आर डी बर्मन जी का म्यूजिक, आनंद बख्शी के लिरिक्स, किशोर कुमार साहब की आवाज में. लेट्स हियर द सॉन्ग.
0: और लता जी का भी साथ है.
1: एब्सोल्युटली.

0: विनी जी, यहाँ पर मुझे एक किस्सा याद आया है कि हमारे जो ये राजेश खन्ना जी थे
1: जी,
0: वो हमेशा शूट पे हमेशा लेट आया करते थे। तो ये फिल्म का जो शूटिंग थी ना, वो अर्ली मॉर्निंग करनी थी, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल की बात थी सुबह जल्दी उठना। तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, फिर भी वो कैसे तैसे करके पहुंच गए शूट पे, और ये गाना उन्होंने अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड किया था। और देखिए फिर ये रिजल्ट हम सब देख रहे हैं, कितना प्यारा ये शूट किया हुआ गाना है, और ये गाना आज भी उतना ही तरोताज़ा लगता है। और हमारी एक रिक्वेस्ट आई है, हमारे एक लिसनर है
1: वजाहत बाजवा जी से,
0: और वो सुनना चाहते हैं फिल्म आई थी महबूबा का ये गाना, मेरे नैना सावन भादो। तो चलिए सुनते हैं ये गाना और लेते हैं ब्रेक।
1: एब्सोल्युटली। म्यूजिक डायरेक्शन बाय आरडी बर्मन, लिरिक्स बाय आनंद बख्शी साहब, और संग बाय नन अदर देन अगेन किशोर कुमार जी।

0: On the Riverbank with Shakespeare on the Saskatchewan. It's Love and Tyranny from July 14th to August 23rd. Set sail on a high seas romantic comedy adventure with a swashbuckling staging of Much Ado About Nothing, and delve into a world of conspiracy and torn loyalties in a modern day take on the original political thriller, Julius Caesar. Don't miss unforgettable live theater, stunning views, and the magic of a festival under prairie skies. Get your tickets at shakespearesask.com.
1: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly, and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
2: I feel like pizza.
3: I feel like beer.
4: This does not have to be a paradox.
5: Who are you?
4: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I try to turn base metals into the gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
0: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
4: The gold, eh?
6: CFCR 90.5 FM in Saskatoon is currently conducting on-air transmitter testing. You may notice intermittent broadcast changes during this time. You can reach us with any questions at 306-664-6678.
7: Welcome back to Sangeet Mala, jo aap sun rahe hain CFCR 90.5 FM par mere yani Nipa ke saath aur mera saath de rahe hain.
8: Aapka host aur dost Vineet aur Nipa ji, main aapse janna chahta hu ki Saskatoon ke mausam ke mizaj ke bare mein aapka kya vichar hai.
7: विनीत जी, अभी मौसम के बारे में देखिए, अभी लास्ट दो वीक पहले ही मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वो इंडिया गए थे, और वहाँ की हमेशा से मैं बातें सुन रही थी, वहाँ पे हमेशा 40 प्लस में हुआ करता था. तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कंप्लेन करूँ, क्योंकि गर्मी है ही इतनी ज़्यादा. और आज का प्रोग्राम में गर्मी ज़्यादा इसलिए लगती है, हमारे गाने भी इतने प्यारे हम लोग चला रहे हैं.
8: Absolutely.
7: तो लेकिन ये मैंने नोटिस किया हुआ है कि इंडिया से जो आता है, जैसे यहाँ पे ये जो सीज़न होती है ना, तो इंडिया से काफ़ी लोगों के पेरेंट्स आते हैं, तो उनको यहाँ पर एक लेयर, मतलब एक लेयर तो पहनना पड़ता ही है, क्योंकि 40 प्लस में से अगर आप डायरेक्ट 20 में आ जाओ तो आपको पता ही है कि बॉडी जो है उनकी यूज नहीं होती है.
8: Absolutely.
7: तो और ये तो बहुत ही खूबसूरत सा वेदर है, और मन करता है कि कहीं छुट्टी पे निकल जाएं.
8: Absolutely. मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मौसम का जो है टेम्परेचर देख रहा था गूगल पे, और पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कंसिस्टेंट नहीं रहा हमारे यहाँ वेदर. गर्मी पिछले साल जैसी नहीं रही, एकदम से बीच में ठंड आ जाती है, हवाएं चलने लगती हैं,
7: बारिश
8: होने लगती है, और शायद आज या कल में स्टॉर्म भी प्रेडिक्ट किया हुआ है. तो मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स जो हैं वो अपना ध्यान रखें, जो भी इंडिया से आ रहे हैं उनका ध्यान रखें, और उनको कहें कि वार्म क्लोथ्स जो हैं वो अपने साथ लेकर के आए.
7: और मनी विनीत जी, एक बात भी मैं कहना चाहूंगी कि लास्ट वीक में हम लोग वास्कस्यू गए थे
8: जी,
7: वहां पे मच्छरों ने जो दबंग मचाया था, ओ माय गॉडनेस, इतने सारे मच्छर हैं कि आपने देखे भी नहीं होंगे उतने सारे मच्छर. तो प्लीज आप भी कोई भी हमारे
8: जो एकदम बड़े बड़े होते हैं और चिपक जाते हैं,
7: चिपकते वो इतने हल्के से बैठते हैं ना, जब तक वो काटते नहीं ना आपको पता नहीं चलता, और आप कितना भी कोशिश करें उड़ाने की वो उड़ते ही नहीं है.
8: जी,
7: और
8: जी,
7: हमारे
8: जी.
7: साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो बेचारे के तो पूरे पूरा उनका
8: चेहरा लाल हो गया,
7: पूरा इतनी बेरहमी से मच्छर ने वो खुरेद दिया था बच्चों की स्किन को और हमको. तो प्लीज आप कहीं पे भी जाओ तो अपने साथ स्प्रे जरूर ले जाइएगा, और एक लेयर रखना जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ के मच्छर है ना, जो पैंट पहनते हो ना जीन, उसके भी आर पार काटते हैं. तो मुझे लगता है सब लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, एक्सपीरियंस किया होगा.
8: जी जी.
7: आप बहुत ही घूमना जरूरी है, लेकिन थोड़ी आप थोड़ा एहतियात रखोगे तो घूमने का मजा
8: बेशक
7: अच्छा ही आएगा.
8: बेशक बेशक
7: और
8: बेशक.
7: चलिए विनीत जी,
8: आगे बढ़ते हैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.
7: और अजनबी का एक बेहद प्यारा गाना है, जो मुझे लगता है आज के जनरेशन के बच्चों को भी ये गाना बहुत प्यारा लगता है. गाने के बोल है, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात होगी और ये रिक्वेस्ट आई हुई है।
8: जी हाँ, ये रिक्वेस्ट आई है हमारे नए लिसनर जो कि सीधा दुबई में बैठ करके हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, श्री रवि जनवासिया जी। उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है उनकी धर्मपत्नी अंजलि जी को जो कि मुंबई में बैठी हुई है। तो लेट्स हियर द सॉन्ग, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, संग बाय नन अदर देन किशोर कुमार साहब एंड म्यूजिक बाय आरडी बर्मन साहब, लिरिक्स आनंद बख्शी। दोस्तों इन तीनों की जो तिगड़ी थी वो काफी फेमस थी और काफी अच्छे अच्छे गाने इन्होंने सिनेमा जगत में दिए। तो लेट्स हियर द सॉन्ग रवि जी एंड अंजलि जी।

0: Mr. Sergeant?
1: देखिए विनीत जी, आपने अभी मुझे मौसम के बारे में पूछा
2: जी,
1: और जैसे मौसम का जिक्र हुआ, हमें एक रिक्वेस्ट आई है
2: जी जी,
1: आज का मौसम अच्छा तो है लेकिन बेमन है, तो ये
2: क्या बात
1: सुनना
2: है?
1: चाहते हैं
2: ये गाना सुनना चाहते हैं श्री पवन कुमार जैन जो कि अभी सैस्केटून में हैं, और उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है उनकी धर्मपत्नी शकुन जैन को। आज मौसम बड़ा बेईमान है, फ्रॉम द मूवी
1: लोफर।
2: लोफर, लेट्स हियर द सॉन्ग फॉर पवन जी एंड शकुन जी।

0: मौसम वाकई में बेईमान है नीपा जी।
1: हाँ जी, वो आंख बिचोली जो खेल रहा है, कितने दिनों से बारिश दिखा रहे हैं, आती है जाती है, लेकिन नो कंप्लेंट्स। इतना प्यारा वेदर कहाँ पे मिलेगा विनीत जी, आप मुझे बताइए। और इंग्लैंड लंदन में भी इतनी गर्मी है कि आपको पता है वहाँ की जो ट्रेन जो होती है ना वो बंद कर दी गई है, क्योंकि अच्छा वहाँ पे एसी नहीं है ट्रेन में। सोचिए वहाँ पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी के हिसाब से वहाँ पे पानी, मतलब ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो मॉइस्चर ज्यादा होता है,
0: अच्छा
1: तो वहाँ के घर में एसी बहुत कम है। और हालांकि मार्केट में कहीं एसी भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता है बीच में 2-3 साल पहले बहुत गर्मी हुई थी तो फैंस भी यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। सेम ऐसी सिचुएशन 36 डिग्रीज वहाँ पे है इंग्लैंड में,
0: लोगों को आदत ही नहीं है।
1: जी आदत ही नहीं है, तो वहाँ का पूरा वो यानी सिस्टम ठप हो गई है। तो गर्मी और ठंडी, मैं तो ये कहती हूँ कि इतना प्यारा वेदर सास्कटून में है तो नो कंप्लेंट्स, राइट?
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
1: और इतने अच्छे गाने हम लोग जो चला रहे हैं तो उससे ज्यादा चाहिए क्या? सुबह का समय है और
0: बेशक
1: सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और इतने अच्छे गाने आप भी एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। और हम बात कर रहे हैं आरडी बर्मन जी के बारे में। तो आरडी जी हमेशा अपनी म्यूजिक में ना कुछ नया इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ताकि मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि फिल्म आई थी सागर, सागर फिल्म में शायद आरडी बर्मन जी का ही म्यूजिक है
0: जी।
1: और उसमें जो गाना था एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में गाया था सच मेरे यार है, उसमें वो गाने की शुरुआत में जो म्यूजिक नोट ली हुई है ना वो कंगी से दिखाया गया है,
0: जो इंस्ट्रूमेंट है,
1: जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंगी से वो आवाज
0: जी जी
1: की हुई है। तो मैं चाहती हूँ वो नोट और वो गाना हमारे लिसनर्स को सुना।
0: एब्सोल्युटली, लेट्स हियर द सॉन्ग।

0: जी हाँ नीपा जी, जैसा आपने बताया कि जो कंगी जो है वो इस्तेमाल की गई थी इस गाने में, तो मुझे और एक वैसा ही गाना ध्यान आया जो इस मूवी के पहले आई थी, ये मूवी काफी टाइम पहले, पड़ोसन, जिसमें सुनील दत्त साहब और किशोर कुमार ने गाया भी था और अदाकारी भी करी थी। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद
1: टुकड़ा रहता है,
0: एब्सोल्युटली। तो लेट्स हियर दैट सॉन्ग, और उसमें भी वही फीचर है जो कि इस गाने में था, तो चलिए सुनते हैं।

0: देखिए, आर डी बर्मन जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर तो थे, हम सबको पता है, लेकिन पता है वो गाना भी बहुत अच्छा गा लेते थे. अच्छा मतलब उनकी आवाज थोड़ी हटके थी,
1: बहुत तो, हटके थी जी जी
0: तो अच्छा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये उन्होंने काफी फिल्मों में आशा जी के साथ में गाने
1: थोड़ा सा आप आशा जी और आर डी बर्मन साहब के बारे में भी बताएं थोड़ा.
0: पंचमदा का बर्थडे है तो मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि आशा जी को पंचम जी के बर्थडे के ऊपर कोई गिफ्ट देनी थी, तो वो हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छी गिफ्ट दे रही थी, तो पंचम दा को वो उनकी जो गिफ्ट देते थे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं थी. वो अरे इसमें क्यों पैसे वेस्ट कर रही हो कुछ. उनको इतने म्यूजिक के अंदर, वो इतने अंदर म्यूजिक में घुसे हुए थे कि वो उनके लिए हीरा भी आप सामने दे दो तो उनके लिए उसका कोई
1: मोल नहीं था.
0: तो आशा जी वही कहती थी ना कि हमेशा पंचम को म्यूजिक के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता था
1: जी.
0: पूरी पूरी रात उन लोग अगर जब कुछ गाना बनाने बैठ जाते थे तो पूरी पूरी रात उन लोग एक साथ में गाना बजाते थे. और आशा जी जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो खाना और गाना दोनों का जो मेल है वो तो बेहिसाब है. लेकिन यहाँ पर मुझे एक गाना याद आ रहा है, फिल्म आई थी मैंने दुनिया में अपना देश
1: जी हाँ,
0: अपना देश का ये जो गाना है उसमें दोनों ने, आशा जी और आरडी जी ने दोनों ने ये गाना गाया है, तो चलिए सुना देते हैं यही गाना.
1: एब्सोल्युटली फ्रॉम द मूवी अपना देश, आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक, आशा भोसले की आवाज. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है.

0: देखिए गाने इतने धमाकेदार होते हैं कि हम लोग बैठ बैठ के हम लोग भी झूमने लगे हैं, इतने अच्छे गाने हैं और उनका म्यूजिक
1: कि हम पॉज दबाना ही छोड़ भूल जाते हैं
0: जी, उनका म्यूजिक ही इतना मतलब रॉकिंग है कि हम लोगों को भी मन करता है कि हम लोग देखते ही जाए। और एक उनका बहुत ही आशा जी का प्यारा गाना है, आर डी बर्मन जी के ही म्यूजिक में फिल्म आई थी द ग्रेट गैम्बलर, उसका जो गाना है दो लफ्जों की है, मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरे चाहने वालों को
1: जी।
0: और सुनते हैं यही प्यारा सा गाना, दो लफ्जों की है दिल की गाना।

0: इतने अच्छे गाने हैं, हम पूरा चलाना चाहते हैं, लेकिन वक्त हमेशा बहुत ही बुरा होता है कि वो इतना जल्दी कट जाता है. शुरू शुरू में लगता है कि हाँ काफ़ी सारे गाने हम प्ले करेंगे, लेकिन बातें करने के साथ में फरमाइशों के बाद में मैंने जी वक्त हाथ में रहता ही नहीं है. और आर डी बर्मन जी ने हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारे गाने दिए हैं
1: जी.
0: और उनका बीच में इतना बुरा दौर चल रहा था कि उनके उनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि म्यूजिक जो था वो चेंज हो रहा था, राइट.
1: अच्छा जी.
0: तो विद्यु विनोद चोपड़ा की फिल्म आने वाली थी 1942 अ लव स्टोरी, तो उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ था. तो उन्होंने काफ़ी गाने विद्यु जी को सुनाए थे, लेकिन विद्यु जी बहुत चिढ़ गए थे और उन्होंने कहा कि कुछ नया करके दिखाए कि अभी ये वो पुराने स्टाइल का म्यूजिक नहीं चल रहा है. तो आर डी जी ने तब उनको कहा था कि मुझे और एक मौका दे दीजिए, मैं अच्छे से आपको धुन सब सुनाता हूँ. और उसके बाद में जो उन्होंने गाने दिए हैं, हालांकि वो फिल्म जब रिलीज हुई तब आर डी जी नहीं रहे थे हमारे,
1: शायद उसी के आसपास उनकी डेथ हो गई थी.
0: जी हाँ. और फिर उस फिल्म के गाने तो आपको पता है इतने सुरीले, उन्होंने जो जाते जाते जो काम करके दिया है वो आज भी हम उस गानों को याद करते हैं.
1: Absolutely.
0: तो मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम का जो बाय बाय टाटा कहते हैं वो कह देते हैं और बैक टू बैक हम गाने सुना देते हैं. तो हमारे लिसनर्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. ICCA का भी बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं की बदौलत हम आप तक ये संगीत माला पहुँचा सकते हैं एवरी वीक.
1: एब्सोल्यूटली. और जाने के पहले मैं एक और समाचार हमारे सुनने वालों को देना चाहता हूँ. दोस्तों, ICCA ने अभी अभी हमारी जो एम्बेसी है उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इनविटेशन दिया है एक कॉन्सुलर कैम्प जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो कब होने वाला है. जी हाँ, जुलाई 18 और जुलाई 19 को एक कॉन्सुलर कैंप लगने वाला है दोस्तों, जो कि हमारे गीता भवन में श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल 107 लारोंज रोड पर होगा. और आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ICCA की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी. आपको जो भी आपके इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड काम हो, चाहे आपको सरेंडर करना हो आपका पासपोर्ट, OCI अप्लाई करना हो, या जो भी इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड काम हो, आप बेशक रजाइना या वैंकूवर या कैलगरी ना जा करके यहीं लोकली सैस्केटून में 18 तारीख को ठीक सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4:30 बजे तक इस फैसिलिटी का लुत्फ उठा सकते हैं दोस्तों. और आप कॉल कर सकते हैं हमारे जो मनीष जी हैं उनको, और उनका जो नंबर है वो हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे. तो जाने के पहले आप अपना ख्याल रखिएगा. मैं और नीपा जी या मनीष जी आपको अगले हफ्ते ठीक सुबह 11 बजे मिलेंगे आप ही के शो में जिसका नाम है संगीत माला.
0: ठीक है, टाटा बाय बाय सायोनारा.

0: CFCR Community Radio. Again, proving that a volunteer is worth 20 pressed men.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तौसीक अजीज और आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बैठक। और दिल की गहराइयों से आप सब तमाम सुनने वाले जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ सैटरडे की इस खूबसूरत सी दोपहर में। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से अपना वीकेंड जो है इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपका बारबेक्यू का प्लान है आप उसकी तैयारियों में कर रहे होंगे, या फिर आप ऑलरेडी यू गाइस आर मिडल ऑफ योर इवेंट। और सास्कटून में बहसियत अगर हम जब रह रहे हैं तो सास्कटून में सस्कैचुअन में बिलखसूस हमें तो समर बहुत कम मिलता है क्योंकि कुदरत को यही मंजूर है। काफ़ी लोग, काफ़ी दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को गिला करते हुए नज़र भी आते हैं। तो लेकिन आखिर क्या किया जाए, क्योंकि इंसान कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं रहा। इंसान हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहा है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम सबको बेहतर से बेहतरीन की तरफ जद्दोजहद और कोशिश करते रहना चाहिए। शायद नहीं बल्कि यकीनन मैं कहूँगा कि इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है। और हर सैटरडे की तरह मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत अच्छा प्रोग्राम लेकर आया हूं। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि एक मौजू डिस्कशन हो सके जिससे आप भी इससे सीखें, और मेरी भी हमेशा की तरह कोशिश होगी कि मैं भी हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आप लोगों से ज़रूर सीख के जाता हूँ। बैठक का ये बहुत मुझे फ़ायदा होता है कि वीकली बेसिस पे जितने चाहने वाले हैं, जितने दोस्त हैं, जितनी बैठक ऑडियंस है हमारी, जो सास्कटून में है, पाकिस्तान में है, दूसरे कंट्रीज़ में है, फेसबुक पर फीडबैक से पता चलता रहता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस फैमिली से, इस सिलसिले से जुड़ गए हैं। तो ये भी एक खूबसूरती है इस प्रोग्राम की। तो बात हो रही थी सैटरडे की खुशी की, तो सैटरडे पूरा वीक मैं इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। ऑफकोर्स वीकेंड भी होता है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने को वक्त मिलता है, लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट यू गाइज। हम इस प्रोग्राम में खुशियाँ शेयर करते हैं, हम इस प्रोग्राम में जो पिछले पूरे वीक में चीज़ें गुजर चुकी होती हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, आने वाले वीक्स को हम प्लान करते हैं। और ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे सिलसिले जो हमारी ज़िंदगियों के साथ जुड़े हुए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। यही बैठक है और यही है, और आज मेरा और आप सबका साथ रहेगा ऑल द वे टिल 3 PM। और अभी चूँकि COVID-19 भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, और स्टूडियो में उसकी भी काफ़ी उसकी वजह से सिचुएशंस चेंज हुई हुई हैं, थिंग्स आर नॉट क्वाइट नॉर्मल येट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेहतरी आ रही है। लेकिन दैट बीइंग सेड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यू गाइस, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दो द इकॉनमी इज़ ओपनिंग अगेन और काफ़ी बिजनेसेस खुल रहे हैं, ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जो इसकी नेचर है नॉर्मल की तरफ ये आ रही है, बट हम सब ने मिल के इस चीज़ को बर्दाश्त करना है और इसमें से हमने गुजरना है। जी, जिस तरह जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा अब तक के बैठक प्रोग्राम में, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ हम एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी डिस्कशन लेकर आए जो लाइक ऑल ऑफ अस कैन ईजीली रिलेट टू इट, ठीक है। और मोस्टली ऐसे टॉपिक्स मैं लाने की कोशिश करता हूँ कि जो बहुत आम होते हैं, आसान फहम होते हैं, आप लोग ईजीली उससे रिलेट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स आई डू रिलेट माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर आई कन्वे द मैसेज और द डिस्कशन टू यू गाइज। अच्छा, अब जो मौजूद बैठक में चूज़ किए जाते हैं वो बसाओकात ऐसे होते हैं, वो इतने आम टॉपिक्स होते हैं कि उनको उनकी आम होने की वजह से ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगियों में। ठीक है, ये इसको जब हम डिस्कस करेंगे, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू एलैबोरेट मोर एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट वाई आई चूज अ पर्टिकुलर टॉपिक्स इन द कन्वर्सेशन ऑफ बैठक। अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम में जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है बैठक में, वो इखलाकियात का है। ठीक है, इंग्लिश में एथिक्स, जो अगर हम मज़ीद अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बोलूँ तो कॉमन एथिक्स होते हैं नॉर्मल, जो हमें अपने रिलेशंस में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने आप ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट्स में, वी शुड नॉट अवॉइड एथिक्स। अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर डीलिंग में हैं, कस्टमर सर्विस में हैं, तो हर कन्वर्सेशन में, हर ज़िंदगी के पहलू में कुछ ना कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इखलाकियात को हमें उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इन चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इंसान की अगर पहचान बनती है तो वो उसके इखलाक बनते हैं। वो यकीन कीजिए कि

तो दैट वॉज अ प्राइम एग्जाम्पल कि हम इखलाक की बदौलत अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर इखलाक नहीं है, अगर आप किरदार को मस्बत अंदाज में कैरी नहीं करते, तो आपके आपके जो जो ज़िक्र है आपकी एब्सेंस में, वो फिर अच्छे अल्फाज में नहीं होती। खैर, आज इस टॉपिक का मकसद आप लोगों को लेक्चर देना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे टॉपिक्स सेलेक्ट करने से मेरी बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ये होती है कि मैं अपने वजूद की, अपने किरदार की मैं इस्लाह करता रहूं, और इल्म या नॉलेज या जो भी वो शेयर करने से बढ़ता ही है। मैं यही सुनता आया हूं और यही है। इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद डिस्कशन होगी। अभी चूँकि म्यूज़िकल प्रोग्राम भी है, टॉक प्रोग्राम भी है, आप हमारी फेसबुक लाइव पर भी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप कमेंट करें तो आपके कमेंट्स को डेफिनेटली शो में शामिल किया जाएगा। और अभी मैं प्रोग्राम में यहाँ पर एक खूबसूरत सा ट्रैक आप सब लोगों के लिए पेश करने जा रहा हूँ, प्ले करने जा रहा हूँ। शफकत अमानत अली की सायरानिक आवाज़ है, मैं नहीं जाना, दैट इज़ द टाइटल बेसिकली, और इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। आप इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए, एंड आई विल बी राइट बैक।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बैठक, मुझे कहते हैं तौसीक अज़ीज़। आपको क्या कहते हैं, आपका क्या नाम है, आप भी हमें कमेंट कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और आज की डिस्कशन का हिस्सा बनिए। आज हम बात कर रहे हैं एथिक्स के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर, कि हमने किस तरह इस्लाह करनी है और हमने किस तरह जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है इखलाकियात की सेंस में। अक्सर देखें, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो मैं बड़ी ना बेसिक से स्टार्ट करने लगा हूँ कि जब हम किसी के साथ मेवे गुफ्तगू होते हैं, कन्वर्सेशन में हम किसी के साथ कर रहे होते हैं, तो पहली जो हम गलती करते हैं कि हम वी डू इंटरप्ट अ लॉट, और ये वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट ये हमारे मुआशरे में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इसका ज़रा ज़्यादा रुझान है कि हम अच्छा। और मज़े की बात यह है कि जो इंटरप्ट कर रहा होता है उसको भी नोटिस नहीं हो रहा होता कि वो कन्वर्सेशन में कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बन रहे हैं, कितना हलल पैदा कर रहे हैं। और इसी तरह जिसको वो इंटरप्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वो बात को मुकम्मल नहीं होने दे रहे होते, वो बंदा भी बड़ा कूल माइंडेड होता है, वो भी बड़ा बंदा ठंडे दिमाग से जो है वो इंटरप्शन कब एक्सेप्ट करता है और कब फिर अपनी आवाज़ ऊंची करके, मतलब वो नाराज़ नहीं होते, वो कोई गुस्से में नहीं हो जाते एकदम से, मगर उनको भी पता नहीं होता कि वो कब वो फिर अपनी बात सुनाने के लिए या अपनी बात करने के लिए उनका जो वॉल्यूम लेवल होता है वो हाई हो जाता है। एंड जो थर्ड पर्सन होता है या जो इन चीज़ों में जिनका कम रुझान होता है, वो बंदा देखने वाला कहता है कि यार ये शायद लड़ रहे हैं या किसी बात पे इनकी बहस हो रही होती है। हालांकि इंटरप्शन करने वाला भी जो है वो नादानिस्ता तौर पर इंटरप्शन कर रहा होता है, डिस्टर्बेंस का बायस बन रहा होता है, और जिस बंदे को डिस्टर्ब किया जा रहा होता है, जिसकी बात पूरी नहीं हो रही होती, उसको भी पता नहीं चलता और वो भी फिर अपनी बात दोनों कंटिन्यू रखते हैं, और फिर जिसकी वजह से जो है वो कन्वर्सेशन किसी ख़ास सिमत नहीं जाती। तो पहले तो हमने ये देखना है कि कन्वर्सेशन करने के दौरान वी हैव टू वेट फॉर आवर टर्न व्हेन वी इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन कन्वर्सेशन, हमने अपनी बारी का इंतज़ार करना है, हमने अगले बंदे की बात सुननी है। आई थिंक ये कॉल अशफाक अहमद साहब का है या किसी और पर्सनैलिटी का है, कि उन्होंने कहा था कि हमारे मुआशरे में सबसे जो एक बुरी चीज़ है, नापैद चीज़ है, वो ये है कि हम अगले बंदे की बात को समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम अगले बंदे की बात सुन रहे होते हैं उसको जवाब देने के लिए। अब ये बहुत आसान अल्फाज हैं, मगर इस एक बहुत ही सिंपल सादा सी फ्रेज़ में एक पूरी कन्वर्सेशन का कह लें कि एक ज़ाबता बताया गया है, जिसमें आपको तवज्जो भी देनी होती है उसके बारे में कहा गया है, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपने अगले बंदे की अगर बात आप सुन रहे हैं तो वो अल्फाज देखें सामने, अगर आपकी समात तक उसके अल्फाज आते हैं, एक बंदा बात करता है और उसके अल्फाज की बनावट, उसका लहजा अगर आप तक पहुंच रहा है, उसकी आवाज़ आपके कानों के पर्दों तक आ रही है, समात तक आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स आप सुन ही रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हैं, मगर कन्वर्सेशन में इस स्पेसिफिक फ्रेज़ में जो ये कहा गया है कि हम सुनते हैं मगर जवाब देने के लिए, हम समझने के लिए नहीं सुनते। व्हाइल वी आर लिसनिंग टू द अदर पर्सन इन कन्वर्सेशन, तो अगर हम वो सुनने के साथ साथ समझने वाला प्रोसेस भी स्टार्ट कर दें और हम अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो उसी लम्हे में मरकूज करें और उसी बंदे की अगर हम बात सुनेंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। एंड नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, आई डोंट मीन टू हैव अ स्किल सेट इन सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, कम्युनिकेशन में अपना मैसेज दूसरे बंदे तक मैसेज पहुंचाना,
आसान तरीके से और अगले बंदे को समझ आ जाना, एतमाद में साथ में ले लेना, यू गाइज आर कमिंग ऑन टू द सेम पेज, दीज आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जब वाइल वी आर लिसनिंग टू द अदर पर्सन, अगर हम समझने की और सोचने का भी प्रोसेस साथ में स्टार्ट कर दें, बजाय जवाब सोचने के कि अच्छा इस बंदे ने अगर ये बात कही है तो मैं इसकी सोच के ऊपर या इसकी बात के ऊपर हावी होने के लिए मैं क्या जवाब दूंगा, 100 में से लाइक 95-98% ऑलमोस्ट हम यही सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब ये बंदा अगर चुप करेगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगले बंदे की बात नहीं सुन रहे होते, लेकिन अगर जब सुनते हैं लेकिन वो भी हम समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम जवाब देने के लिए हो रहे होते हैं। तो एक तो ये कॉमन मिस्टेक है, आई एम प्रीटी मच श्योर ऑल ऑफ यू गाइज हैव एनकाउंटर्ड दिस, आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा और मैं भी, ऑफ कोर्स इंसान गलती का पुतला होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन करता हूँ, कभी कभार हो जाता है, बट वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड These things. Basically, इखलाकियात की हम डिटेल में जाने से पहले हम एक एक मुख्तसर सी दो लाइनों में समझ लें कि what actually ethics are, इखलाकियात actually होती क्या है। तो इखलाकियात basically मेरे नज़दीक इखलाकियात इखलाकी इकदार का एक ऐसा निज़ाम है जो एक खुशगवार ज़िंदगी की खातिर हमारे रवैये को तश्कील करता है। ठीक है, ये अगर आप इखलाकियात के बेसिकली निज़ाम को अपनाएंगे, समझ लेंगे, तो इसके रिज़ल्ट में आपको यू विल बी एंजॉयिंग अ प्लेजेंट लाइफ आफ्टर। ठीक है, बट उसके लिए शर्त क्या बताई गई है कि वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, अब इखलाकियात के तवसत से हम ईमानदारी से ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, पहला जो रूल बताया गया अखलाकियात का वो ईमानदारी है, जिससे हमारे इर्द गिर्द लोगों से भरोसा और दोस्ती जन्म लेती है, और अखलाकियात बेसिकली दरअसल मुसर्रत की कलीद है। ठीक है, जब हम अखलाकियात के पहले रूल जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, जब हम उसको अपनी ज़िंदगी का एक एक एक लाइफ स्टाइल बनाएंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी लॉयल और ऑनेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लाइफ और इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स, तो फिर हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होंगे जिनसे हम डेली बेसिस पे इंट्रैक्शन करते हैं, वंस अगेन वो आपके दोस्त यार आ जाते हैं, आपके ऑफकोर्स फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, आपके जस्ट एक्वेंटसीज आ जाते हैं, आपके अब ऑफिस में लोग आ जाते हैं, आप कहीं कहीं जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं आप उनके साथ आ जाते हैं। तो जब आप ऑनेस्टी को अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे तो फिर उनके साथ आपका एक एक ब्रिज बिल्ड होगा, उनके साथ आपकी एक एक रिलेशनशिप जो है वो कायम होगा। तो पहला जो रूल है एथिक्स का, इखलाकियात का, वो मेरे नज़दीक ईमानदारी है। अब हर इंसान का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ नज़रियात से देखता है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो सिमिलर नहीं होती दूसरों से, हर इंसान की डिफरेंट ज़िंदगी होती है, डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, डिफरेंट उसके उसके नतीजे होते हैं। तो खैर, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, तो हमें इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि ईमानदारी जो चीज़ है वो ऑफ कोर्स इस्लाम में भी उसकी बड़ी तलकीन की गई है, और बल्कि इस्लाम के अलावा आप किसी भी मज़हब को अगर आप स्टडी करें तो आप देखेंगे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम वाकई अपनी भलाई की फ़िक्र करते हैं तो अपने रवैये के मुतल्लिक हमें जो है वो अपनी विजडम के हिसाब से डिसीजंस जो है वो लेना एक एक एक हमें माकूल नहीं लगता। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इस हवाले से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग आवरसेल्व्स ऑन द अदर्स, तो फिर हम जो हैं वो बसा औकात जब हम डिसीजंस लेते हैं तो फिर हम अकल
को इस्तेमाल में हम नहीं ला सकते या नहीं लाते अक्सर देखने में ये आता है। अब अगर हम इसी रूल को देखेंगे तो हर कोई जो इंसान है वो हमेशा यही चाहता है कि मेरी लाइफ में कंफर्ट हो, मेरी लाइफ में खुशियां हों। तो वो हर बंदा इन चीज़ों का हकदार भी ख़ुद को समझता है और हर इंसान खुश रहने का हकदार वाकई है भी, लेकिन जिसमें ऑफकोर्स हम भी शामिल हैं। तो अब इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं में कभी कभार दानिस्ताना दानिस्ता तौर पर हम नफ्सा नफ्सी के पीछे पड़ जाते हैं। वी डोंट केयर अबाउट आवर पीपल वी आर सराउंडेड बाय, हम जो है जिनके साथ इंट्रैक्शन में रहते हैं हम उनको बसा औकात इग्नोर कर देते हैं। तो अपना जो है वो ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, आप अपने राइट्स के लिए ज़रूर जो है आवाज़ बुलंद करें, अपने राइट्स के लिए ज़रूर जद्दोजहद करें, मगर हमें उसी दौड़ में उसी इस्नाह में दूसरे लोगों के साथ भी जो है वो इंसाफ का दामन हमने अपने हाथ से नहीं जाने देना, हमने दूसरों के साथ भी इंसाफ से काम लेना है। अच्छा, अब मैं मज़ीद अपनी बातों से आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्सों में इस पर मज़ीद बात करेंगे अखलाकियात में। प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा म्यूज़िकल ट्रैक शामिल करने से पहले मैं एक और आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जी फलां शख्स बहुत खुश अखलाक है, कभी उससे मिलिएगा जी खुश हो जाएगा आपका, या फलां तो बड़ा बद अखलाक है, मैं तो कभी उससे बात ना करूं। तो अब इस चीज़ से, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इस चीज़ से हमें क्या मतलब मिलता है, इस चीज़ से हमें ये मतलब मिलता है कि खुश अखलाकी बहुत बड़ी नेमत है। खुश अखलाकी अगर हम अपने हाथ में रखेंगे, उसको हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो इवेंचुअली इट विल बी बिकमिंग आवर लाइफस्टाइल, जिस तरह हमारी रिलीजियस टीचिंग्स में भी ये सारी चीज़ें हैं। और हम अगर इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ऑफकोर्स इवेंचुअली इखलाक जो एक मुस्बत इखलाक खुश अखलाकी जो है वो हमारी पहचान बन जाएगी। इसी बात के साथ हम अभी प्रोग्राम में एक सजाद अली की आवाज़ में गाना शामिल करते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो शो राइट हियर बैठक, राइट हियर ऑन CFCR 90.9।

जी खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके शो में बैठक में, और वंस अगेन दिस इज़ तौसीक अज़ीज़। और अभी हम जो है वो प्रोग्राम को इस लास्ट सेगमेंट में हम रैप अप करेंगे। आप सुन रहे थे सजाद अली की खूबसूरत आवाज़, उनका जो टाइटल है बारिश। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की है इखलाकियात के हवाले से कि यू नो व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ नेशन, या माशरे की बेहतरी के लिए इखलाकियात कितनी ज़रूरी हैं, क्या वर द इंग्रेडिएंट्स यू नो, तो क्यों इसकी अहमियत क्या है, क्या इसकी तलकीन क्या है, इसकी तालीमात क्या हैं, और अपनाने के लिए हमें क्या चीज़ें जो हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है। म्यूज़िकल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किन चीज़ों का होना जो है वो मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अभी हम जो है वो बात करेंगे कि किन चीज़ों की वजह से, किन चीज़ों को अपनाने से हम अपने मुआशरे को बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स ये मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं इसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ आज के सेशन में। बहरहाल दुनिया में जो रुजो तरक्की हासिल करने वाली कौम हमेशा अच्छे अखलाक की मालिक होती है। अब एक बात याद रखें कि ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये बेसिक एथिक्स की बात हम कर रहे हैं। दिस इज़ द रिगार्डलेस रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन, किसी भी मकतब फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ हो, दीज आर द बेसिक नॉलेज, और ये बेसिक आपकी तालीमात हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जो उरूज पाने वाली कौम है उनकी एक जो दूसरी खासियत होती है, खसूसियात होती है, उसमें एक खासियत जो है वो ये भी होती है कि वहाँ के जो अफराद हैं, वो कौम जो होती है वो अच्छे इखलाक की मालिक होती है। जबकि बुरे इखलाक में अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो बुरे इखलाक की हामिल कौम ज़वाल पज़ीर हो जाती है। ये मंजर आप इस वक्त दुनिया में अपने शर्क व गर्ब में नज़र दौड़ा कर देख सकते हैं। दोज़ आर द प्राइम एग्जाम्पल्स के उरूज व तरक्की कहाँ है और ज़िल्लत व रुसवाई कहाँ है। हालांकि अगर हम देखें पाकिस्तान की बात करें, ईस्टर्न कल्चर की बात करें, या अगर आप एक एक रिलीजन की बात करें, तो बहुत सारी जो हमें तालीमात हैं जो 1435-36 साल पहले हमें बताई गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी, अल्लाह ताला ने